दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: अरे भाई ये क्या हो रहा है?
1: अरे ढोलक बज रहा भाई, ढोलक
0: ढोला क्यों बज रहा है?
1: अरे शादी है यार, शादी
0: शादी हम भी चलेगा।
1: चलो चलो चलो, हाँ चलेगा।

0: बिल्कुल दोस्तों, उन नए विचारों के साथ हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आप जानते हैं कि वो रूहानी आवाज है आशा भोसले जी की। आप गीतांजलि सुन रहे हैं और कुछ ही क्षणों में हम आपको बताएंगे कि आज के कार्यक्रम में हम क्या करने जा रहे हैं और ये होगा इस अंतराल के बाद।
1: Hi, this is Michael Owen, Hollywood Bets brand ambassador. Being a champion, I know the best performances come from making the right decisions on and off the pitch. Enjoy the game, enjoy the excitement, but play responsibly. Gambling responsibly is about staying in control so you can enjoy it your way. If you or someone you know needs support, help is always available. Call the South African Responsible Gambling toll-free counselling line on 0800 006 008 or WhatsApp help to 076 675 0710.
2: Jayashree's Rivas have just unpacked their brand new range of saris for Lakshmi Puja and Raksha Bandhan, as well as the latest collection of saris, Punjabis, skirt sets and lehengas for all occasions. Jayashree's Rivas, all branches and online.
3: You are listening to Geetanjali.
0: जी हाँ, आप वीना के साथ हैं। चलिए हम आपको बताएं कि आज के कार्यक्रम में हम क्या करने जा रहे हैं। कुछ क्षणों में हम थोड़ी सी हिंदी सीखेंगे एक बहुत ही नेक विचार के साथ, अ ब्यूटीफुल वन वी पिक्ड अप फॉर यू टुडे, सो डू स्टे ट्यून फॉर दैट। और आज के खास कलाकार हैं के के, मतलब कि कृष्ण कुमार कुन्नाथ जी। ओके, आई होप आई गॉट his name pronounced correctly. Amazing artist on today's show, and of course we all know him as KK. Was born on the 23rd of August 1968, and today we celebrate this amazing artist who no longer is with us, unfortunately. Aur program ke dusre bhag mein hum thodi si hindi seekhenge is idiom ke saath, aur aaj ka idiom hai kabu mein rakho. काबू में रखो, इसका मतलब क्या है? जी हाँ, आप गीतांजलि सुन रहे हैं, तो चलिए हम थोड़ी सी हिंदी सीखें, मतलब कि इस अंतराल के बाद। बारी आई है थोड़ी सी हिंदी सीखने की सिर्फ गीतांजलि पर, सिर्फ लोटस एफएम पर। इट्स अ टाइम ऑफ द आवर वे वी लर्न सम हिंदी ऑन गीतांजलि ऑन लोटस एफएम, एंड टुडेज़ लेसन इज बेस्ड ऑन द ट्रूथ। एंड एज वी ऑलवेज डू, वी गिव यू अ ब्यूटीफुल थॉट इन हिंदी लैंग्वेज, वी ट्रांसलेट दिस इन टू इंग्लिश, एंड देयर आफ्टर वी शेयर विद यू सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड इफ टाइम परमिट्स सम इम्पोर्टेंट ग्रामर स्ट्रक्चर्स एज वेल। सो टुडेज़ थॉट रीड्स लाइक सो, सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। अ वेरी ब्यूटिफुल वन, एज आई सेड, इट हैज़ टू डू विद द ट्रूथ, एंड द इंग्लिश इक्विवेलेंट रीड्स लाइक सो, इन ऑर्डर टू प्रूव द ट्रूथ वन डजंट हैव टू इंसिस्ट दैट अदर्स बिलीव दैट ट्रूथ, बिकॉज द ट्रूथ एट द राइट टाइम प्रूव्स इट्स सेल्फ। ओके, लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है। सत्य रिफर्स टू ट्रूथ एंड सिद्ध मीन्स टू प्रूव। सो सत्य को सिद्ध करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रूव द ट्रूथ, किसी से भी, टू एनीवन, इट डजंट मैटर हु द पर्सन इज, सो इन ऑर्डर टू प्रूव द ट्रूथ टू एनीबॉडी, जिद करने की जरूरत नहीं है। Zid means to persist or to insist or to be stubborn to get somebody to hear what you have to say. So zid karne ki zarurat nahi hai. Zarurat means necessity. It's not necessary to insist that somebody listens to the truth. The reason is kyunki, kyunki means because, satya khud sahi samay par swayam sid ho jata hai. Satya simply means the truth, as you do know. Khud means on its own. Sahi samay par. Sahi means at the appropriate, at the correct what? Samay, and samay means time. Sahi samay par, at the correct time, at the right time, swayam on its own, siddh ho jata hai. Siddh means to prove again. So the truth proves itself on its own when the time is right. So once again in Hindi it reads, satya ko siddh karne ke liye kisi se bhi zid karne ki zarurat nahi hai. Kyunki satya khud sahi samay par swayam siddh ho jata hai. And all of that once again in English, in order to prove the truth, one doesn't have to insist that others believe that truth, because the truth at the right time proves itself. A very quick grammar reference here, we will say, ki zarurat, as in zid karne ki zarurat nahi hai. We say ki zarurat because zarurat is feminine in gender. So I hope you've picked up some good words here and a very wonderful thought as well. And I trust that you have learned some Hindi to use in your everyday usage of the language. Thank you for tuning in.
4: जी हाँ दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं और हम फिर से हाजिर होंगे, मतलब कि इस अंतराल के बाद.
5: Spinners on Case celebrate a major milestone. The online gaming powerhouse from Hollywood Bets now offers over 3,000 games. Spinners on Case boasts unbeatable diversity and range, featuring a wealth of games from across the gaming spectrum. Over 35 of the world's top game design studios feature in the sizzling slots on Spinners on Case. Gripping graphics and sublime sound ensure the most immersive gaming experience imaginable. Play now.
6: Hollywood Sportsbook is a licensed betting operator. No persons under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop. South African Responsible Gambling Foundation toll-free counseling line 0800 006 008 or WhatsApp help to 076 675 0710.
2: Jayashree's Rivaz have just unpacked their brand new range of saris for Lakshmi Puja and Raksha Bandhan, as well as the latest collection of saris, Punjabis, skirt sets and lehengas for all occasions. Jayashree's Rivaz, all branches and online.
3: Veena Lakshman on Lotus FM.
4: बिल्कुल दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं. सो सम ऑफ आवर लिसनर्स डिडन्ट क्वाइट गेट द इडियम फॉर टुडे. द इडियम फॉर टुडे इज काबू में रखो. सो इट्स अ वेरी गुड वन टू नो एंड इट्स समथिंग दैट वी कैन यूज ऑन आवरसेल्व्स एज वेल, बट वी विल डीकोड दैट अ लिटिल लेटर. बट हियर इज अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. मेनी ऑफ आवर लिसनर्स यस्टरडे responded to a request that was made on Bhakti Sangeet. We had spoken to Swami Vedanandji of the Ananda Dham, and he had shared a WhatsApp community group. And if you'd like to join that community group to find out what the different programs are of Ananda Dham, all you need to do is just send me a WhatsApp on our Lotus FM WhatsApp, and I will send you that link. It's a very good idea to be part of this, because it's a body that is intended to be very, very spiritual. So something that you might find very interesting to be part of. So let's chaliye program ko aage badhate hain. Remember, once again, our phrase, our idiom for today is काबू में रखो. What does that mean? चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की रूहानी आवाजों के साथ. बहुत ही खूबसूरत रचना है जो है फिल्म जूली से.

जी हाँ दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं और खैर की बात है मगर समापन की घड़ी करीब आ गए हैं और इसका मतलब है कि अब मुझे शुभ रात्रि कहनी है. और आई डू रिमाइंड यू दैट आफ्टर द 7 PM न्यूज यू कैन लिसन इन टू लोटस FM's टॉक एट 7, ऑलवेज एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम विद वंडरफुल टॉपिक्स. अगले हफ्ते अगर भगवान की मर्जी हो तो हम जरूर मिलेंगे. तब तक के लिए मेरी ओर से नमस्कार और शुभ रात्रि.